0: थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू,
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते, सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: के न फोन पे बुलाओगे, न शाम की करारी चाय लबों से यूं चुराओगे।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मिनट ऑन दिस वेंसडे की सुबह, ब्रिटिश मैन इज इन द न्यूज दिस मॉर्निंग फॉर फाइनली कमिंग बैक होम फ्रॉम अ ट्रेक. इस पे कौन सी बड़ी बात है बताता हूँ.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बड़ी बात भी है, बड़ी ट्रेक भी है, बिकॉज ज्यादा नहीं बस कुछ 28 साल की लंबी ट्रेक थी ये. एंड ही कवर्ड 50,000 किलोमीटर्स ऑन फुट. ऑन फुट बोले तो ही हैड वन रूल सिंस 1988 में वो घर से निकले थे ऑन दिस ट्रेक. एंड अब जाकर 2026 में वापस आए हैं. एंड हिज रूल वॉज कि आई विल नॉट यूज एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मूव फॉरवर्ड ऑन माई ट्रैक, राइट. सो मतलब वहीं पर इर्द गिर्द घूमने के लिए ठीक है, साइट सींग करने के लिए ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए on this tour I will not use any sort of transport. So what do you think about this? Would you go on a 28 year long trek? Mujhe lagta hai 28 minute ka mushkil hota hai, 28 saal to from bhai tera star, he's an absolute superstar. Can't even imagine what he's gone through. Aankhon Se Doone 2.0 coming up in just a while. In case there's a song that you want to listen to early in the morning, let me know. 054-309-1062 is our WhatsApp number.

0: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस 48 आवर्स में एक वीजा पाइए ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
1: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Nothing feels wrong, and that's exactly why you should get checked. This October, give yourself a little peace of mind. Pink It Now is back for its 15th year at Zulekha Hospital. Women over 40 can register for a specialist consultation and mammogram for just 299 dirhams. Because looking after yourself isn't selfish. Call 600-52-442 or WhatsApp us. Pink It Now. Don't wait to feel something. Zulekha Hospital. Your health matters.
3: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 60% ह्यूमिडिटी भी हमें रिलीफ देती है। इट्स दैट काइंड ऑफ वेदर आउट देयर। वेंसडे की सुबह 60% ह्यूमिडिटी के अलावा 32 डिग्री सेल्सियस ऑन एवरेज टेम्परेचर आउट देयर। विंड्स ब्लोइंग एट 11 किलोमीटर पर आवर, हाइज ऑफ 37, लोज ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, The Beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 8:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस हे मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हम स्नैकिंग करने वाले। अब रेगुलेशन जो अथॉरिटीज है उन्होंने कहा कि यार अब आप लोग तो ये स्नैकिंग कम नहीं करोगे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस कमिंग इन द वर्ल्ड ऑफ स्नैक्स।
1: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2. The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: अपने प्रोडक्ट्स को सुधार लो वरना हम लोग आपको सुधार देंगे। दैट्स व्हाट द अथॉरिटीज आर सेइंग आउट हियर। 31st ऑफ दिसंबर 2030 तक फाइनल लिमिट्स है। देयर इज न्यू फूड लिमिट्स दैट आर कमिंग अप हियर इन द यूएई। मैक्सिमम लेवल ऑफ नमक, चीनी एंड मोटापा, यानी कि सॉल्ट, शुगर एंड फैट सिलेक्टेड पैकेज फूड्स में एंड लोकली चाहे बनता हो चाहे इम्पोर्टेड यू नो इन टू द यूएई, दीज लिमिट्स आर गोइंग बी वेरी वेरी स्ट्रिक्टली एनफोर्स। सो अगर फूड बिजनेस है आपका, सो यू हैव टाइम टू रीफॉर्मुलेट द प्रोडक्ट एंड इंट्रोड्यूस प्रोग्रेसिवली इन फेजेस के जो चेंजेस हैं। द फाइनल लिमिट इज गोइंग बी द 31st ऑफ दिसंबर। अगर ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट मार्केट में है, इट्स ऑन द शेल्व्स, देन एक साल है आपके पास या फिर अंटिल एक्सपायरी टू काइंड ऑफ मेक दोज चेंजेस ऑन द प्रोडक्ट्स। एंड ब्रेड फॉर एग्जाम्पल, या ब्रेड में अभी जितना शुगर होता है इट्स 6 grams, इट शुड बी डाउन टू 5 grams फॉर एग्जाम्पल। वेदर इट्स लेवन ब्रेड और इट्स फ्लैट ब्रेड, एंड इवन द फैट कॉन्टेंट शुड बी डाउन फ्रॉम 8.4 grams दैट इट इज करंटली टू 7 grams, और नमक सोडियम शुड बी डाउन टू 320 to 370 mg। सॉल्टेड क्रैकर्स की बात है, नट्स, प्रेटजल्स, पोटेटोज, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन स्नैक्स, मे बी द सोडियम कॉन्टेंट specifically should be much much lesser than what it is right now. Then milk drinks mein sugar content, yogurt, laban mein there should be max of 10 gram of sugar. So this is great, yeah, this is absolutely amazing. Lekin the question is ki agar koi business hai that doesn't comply to inke sath kya hoga? 5000 to half a million dirhams tak ka fine ho sakta hai, and you might find that the business might close down for up to 6 months as well. License approval जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। सो दिस अ बिग बिग मूव्स दैट आर बीइंग मेड आउट हियर इन द यूएई व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड ऑफ फूड। टॉकिंग अबाउट सॉल्ट, शुगर एंड मस्का, हियर इज मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा।

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: All right, I've got Anushka with me on the phone line. Good morning, Anushka. Kya hal chaal hai?
2: Good morning, Sid. Mithiko, how are you?
1: Very, very good. Yeah. Anushka, you on your way to work or what's happening this morning?
2: Exactly right. I'm on my way to work. I would reach Takriban in 5 to 7 minutes.
1: Wow, yeah. That is very punctual of you. 9 o'clock reporting time, huh?
2: Yes.
1: Aaj, kaisa, mother, usually what happens on the 7th of October? Is it like somebody's birthday? Is it like a special day, you think, today or Wednesday? Or just, I mean, are you, have you got something special planned or what?
2: Nothing much planned. I have a lot of meetings lined up today.
1: Haan, matlab kaafi sare clients ko botal mein utarne ka plan. Aap kya kaam karte ho?
2: Matlab, I work in the finance department for gym brand, gym equipment brand.
1: Achha, toh kuch bolo na, sir, mere paas ek bahut hi achhi trade. Aisa batao na, how do you do your sales pitch? Tell me na.
2: नहीं नहीं मतलब आई मीन फाइनेंस तो आई
1: कलेक्ट सर मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रेडमिल है सर ये 0 to 10 इन 5 सेकंड पहुंच जाती है सर
2: फैंटास्टिक ट्रेडमिल विद डिजिटल सर्विसेज अवेलेबल सर तो दिस इज द ओनली वन यू कैन फाइंड इन द होल मार्केट
1: नहीं एक्सक्यूज मी डिजिटल सर्विस तो सबकी होनी चाहिए ना आज थोड़ी कोई एनालॉग ट्रेडमिल पे दौड़ोगे आप
2: मतलब डिजिटल सर्विसेज मतलब लाइक फॉर एग्जांपल यू डोंट नीड लाइक अ पर्सनल ट्रेनर मतलब विद
1: अच्छा मैं बताऊंगा अपने पर्सनल ट्रेनर को आपका नंबर देता हूं कि यू वांट टू पुट हिम आउट ऑफ बिजनेस एंड पीपल लाइक हिम हां वेरी गुड अनुष्का अच्छा है इस मार्केट में भी आप लोगों की नौकरी आ रहे हो
2: I know.
1: चलो वेरी गुड यार लास्ट टाइम मुझे काफी मजा आया आपसे बात करके तो मैंने कहा कॉल करके मेरा आई वाज जस्ट फीलिंग अ बिट ऑफ टुडे सो आई सेड लेट मी जस्ट कॉल अनुष्का एंड यू नो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा
2: अच्छा वाओ
1: चलो एंजॉय योरसेल्फ एट वर्क ओके
2: ठीक है थैंक यू
1: ठीक है अनुष्का कॉन्ग्रेचुलेशन यू गुड जर्मनी टाइम पास कर रहा हूँ मैं आपके साथ यू हैव वन एन ऑल एक्सपेंसेस पे ट्रिप टू जर्मनी अब बताओ कैसा लग रहा है बल्ले बल्ले जल्दी आपको जो पैक करना है ट्रेडमिल डंबल्स यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैंड्स वैंड सब कुछ डालो सूटकेस के अंदर एंड वी आर हेडिंग आउट टू जर्मनी
2: थैंक यू सर सो मच आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस
1: I've made your month this entire financial year. What are you talking about? This is going to be the trip that you're going to be remembering for a very, very long time. Guarantee hamari hai. And how are you feeling? Can you describe in words what you're feeling right now? Tell me.
2: This is my first ever Schengen trip. And I'm so excited for it coming with you guys. Thank you so much.
1: Amazing. So we can't be happier for you. Maza aa gaya, matlab aapse baat karke. And we can't wait to have you on the trip. And now it is 8:57. You're 3 minutes away from entering your workspace. So tell me, who is the first person that you're going to give the good news to?
2: I'm going to break it to my fiancé.
1: Yeah? Lovely.
2: Yes, and you're going to...
1: And कब शादीवादी की डेट फिक्स हो गई क्या सीन है
2: मतलब नॉट येट मे बी इन अ ईयर
1: क्या बात है मतलब फियोंसे का नाम क्या है
2: फियोंसे का नाम है रुतुल
1: रुतुल इज गोइंग टू गेट मैरिड टू अ जर्मनी रिटर्न जर्मनी रिटर्न अनुष्का ऐसी वैसी अनुष्का नहीं है नाउ शी इज गोइंग टू बी अ जर्मनी रिटर्न अनुष्का यार क्या बात है वेरी गुड यार सो कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस और हमें शादी में बुलाना भूलना मत ठीक है ना
2: Sure, 100%.
1: Take care, Anushka. Congratulations once again from all of us at Big. And yeah, now's the time that you kind of go and spread the news, call your friends and family and your fiance and celebrate to the fullest, yeah?
2: Sure. Thank you so much.
1: Take care. That is

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 9:11।
1: Bollywood.

0: 9:20 on this Wednesday and I take a moment to appreciate Khalid. Jab bhi main show pe aata hun, every single day there is one thing that happens with me and mere aane se pehle Khalid ka message aa jayega. He says, good morning Sid, welcome on the show Khalid. Khalid, thank you so much from the bottom of my heart. These are the kinds of little sweet things that you guys do which keep me going, make me wake up so early in the morning every single day, and this is the kind of thing that cannot be replaced by AI.
1: Credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Yeah, today's the day when Dubai Parks and Resorts actually reopens after 6 months. 6 months ke baad khulne wala hai. But I'm going to be saying something jo sochta har koi hai, lekin uski baat nahi hoti jitni ki honi chahiye yaar. I mean, who misses Bollywood Parks? I mean, Bollywood Parks ko main bahut zyada miss kar raha hu jab se ye aaj subah se. I don't know, it's just one of those things that achanak ho jati hai and you caught kind of unawares, right? So aaj 7th of October everybody's talking about Dubai Parks and Resorts and how it's going to get back in action, but I'm getting a bit nostalgic missing Bollywood Parks, because I don't know about you, it was one of my favorite parks, right? Favorite places to actually take guests. Aur wahan par jaakar ek, there was a flood of emotions that I used to feel ke, ek to ek sort of pride bhi feel hota tha, because being desi is kind of feel proud about your film industry, right? And there were some really neat experiences out there, really amazing rides also. They've done like a very good job, I feel, yeah. Right from the figurines to the khane ke options wahan par jo the, and the shows that they had put up, yeah. Although I never could catch, मतलब काफ़ी बार मैं गया लेकिन कभी भी मैं सलमान खान वाला जो दबंग का शो था वो कभी कैच नहीं कर पाया. बट चलो इसी बात पे पूछता हूँ आपसे एक बॉलीवुड सवाल. अ चांस फॉर यू टू विन टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज. इट्स गॉट अ लोकल कनेक्शन फॉर अ चेंज. कि जब बॉलीवुड पार्क्स था तो उसमें से इनमें से कौन सी फिल्म में का राइड नहीं था. विच ऑफ दीज फिल्म डिड नॉट हैव अ राइड एट बॉलीवुड पार्क्स एट दुबई पार्क्स एंड रिसॉर्ट्स. ऑलराइट, सो ऑप्शन ए इज इट डॉन, शाहरुख खान वाली. ऑप्शन बी इज इट दिल चाहता है, या ऑप्शन सी इज इट लगान. इनमें से कौन सी बॉलीवुड फिल्म पे बेस्ड एक राइड या एक्सपीरियंस नहीं था इन बॉलीवुड पार्क्स व्हेन इट वाज देयर. सो ऑप्शन ए इज इट शाहरुख खान के डॉन, ऑप्शन बी इज इट दिल चाहता है, या ऑप्शन सी इज इट लगान. द करेक्ट ऑप्शन, स्पेस योर नेम, जस्ट व्हाट्सएप इट राइट नाउ टू 0543091062. दैट 0543091062 टू विन टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग.

0: बीमार हो?
1: No.
0: तो लेती क्यों?
1: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे है सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, दिल को धड़कन धड़कन, फरफराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, टपकपाहट, झटपटाहट, फटाहट, झुबुबाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुला

0: a bit of a throwback at Bollywood Parks. Aaj 7th of October is when Dubai Parks and Resorts is reopening after 6 months. And ek Bollywood Parks se juda sawal aaj maine kiya.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: At stake are two open movie tickets. This is the big Bollywood quiz with a local connection for a twist, for a change. And I'm going to throw it open to the phone lines. 800-1062 pe aap call karke batao ki inme se kaun si film पे बेस्ड बॉलीवुड पार्क्स एंड रिसॉर्ट्स में राइड नहीं था व्हेन इट वाज ऑपरेशनल. ऑप्शन ए इज इट शाहरुख खान के डॉन, ऑप्शन बी इज इट दिल चाहता है, ऑप्शन सी इज इट लगान. इफ यू नो द करेक्ट आंसर गिव मी अ कॉल 800-1062. एंड गॉट लॉट्स ऑफ रॉन्ग आंसर्स एक्चुअली. रमन ने गलत जवाब दिया, नवीद आपका जवाब भी गलत है. विच ऑफ दीज थ्री फिल्म्स डिड नॉट हैव राइडर एक्सपीरियंस एट बॉलीवुड पार्क्स एंड रिसॉर्ट्स? ऑप्शन ए इज इट शाहरुख खान के डॉन, बी इज इट दिल चाहता है, या सी इज इट लगान? गिव मी अ कॉल, लेट मी नो 800-1062 for two open movie tickets in the Big Bollywood quiz. You could win.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक,
2: गुड मॉर्निंग, 10:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे।

0: Do you have a correct answer for the question that what is the ideal age gap?
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में कितना गैप होना चाहिए? Should it be like, are you in that camp which says कि नहीं यार फटाफट करो जल्दी काम खत्म करो so that you know जो पलेंगे तो दोनों साथ में एक लाइन ऑफ थॉट वो है एंड दूसरा है कि नहीं यार एक को अच्छे से यू नो 3-4 साल फोकस ऑन द फर्स्ट चाइल्ड देन यू नो सी इफ यू आर रेडी देन गो फॉर द सेकंड वन सो दिस इज लाइक अ नेवर एंडिंग काइंड ऑफ अ डिबेट एंड स्पेशली अमंग देसी हाउसहोल्ड्स ऐसा ही कुछ हुआ होगा इन सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणीज लाइव्स बिकॉज दे आर नाउ एक्सपेक्टिंग देयर सेकंड चाइल्ड Yeah, they announced it with a very sweet pick and announcement. Blessed once again with the greatest gift of all. Our hearts are so full of love and gratitude. End quote. Now, हाँ, हर किसी का reaction आज सुबह यही हो रहा है. अरे अभी तो पहला वाला. Yeah, they had their first child not very long ago. Last year they had it in July, and now they are already expecting their. So इसीलिए now expect के सारे देसी households में this you know and WhatsApp groups के what is the ideal age gap? अगर आपके पास है इस का जवाब, if you like firmly believe in one side of that debate, then you know what, give me a call, let me know, 800-1062 par ke kya lagta hai aapko age gap kitna hona chahiye, are you in the kam age gap ke jaldi fatafat first and second child, or are you ke nahi thoda sa ruk ke aaram se aisi bhi kya jaldi hai, kya hai aapka opinion, have you come to a conclusion, have you and your family come to a conclusion, share it with me on 800-1062, coming up in just a while. Mera, आवारापन 2 से तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज बिग ब्रेकफास्ट इन जुलेखा हॉस्पिटल का रिश्ता इज क्वाइट गहरा बिकॉज द शो इज ब्रॉट यू बाय जुलेखा हॉस्पिटल एंड इफ नथिंग फील्स रॉन्ग दैट्स एग्जैक्टली व्हाई यू शुड गेट चेक दिस अक्टूबर पिंक इट नाउ इज बैक फॉर इट्स 15th ईयर एट जुलेखा हॉस्पिटल वीमेन ओवर 40 कैन रजिस्टर फॉर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन मैमोग्राम स्पेशल पैकेज प्राइस ऑफ 299 दिरहम्स ब्रेस्ट कैंसर कैन हैव नो ऑब्वियस सिम्टम्स सो डोंट वेट अंटिल यू फील समथिंग टू गेट चेक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आउट देयर लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ इजंट सेल्फ It's something the people you love are counting on. So call 600-52-442. That's 600-52-442 or WhatsApp Zuleika Hospital to register. Pink it now. Don't wait to feel something. Zuleika Hospital, your health matters.
1: Big 106.2.

0: बिग आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग ब्रेकफास्ट ब्रॉट टू यू बाय जुलेखा हॉस्पिटल योर हेल्थ मैटर्स.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugembo! खुश हुआ
3: मिस्टर अनूप. हाय गुड इवनिंग.
4: गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. कैसे हैं?
3: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो?
4: मैं बढ़िया, बहुत बढ़िया.
3: नेम थ्री थिंग्स दैट आर येलो इन कलर.
4: बनाना
3: और थिंग्स.
4: ऑरेंज एंड
3: ऑरेंज इज येलो इन कलर. बहुत बढ़िया अनूप साहब, तालियां मेरी तरफ से. ऑरेंज इज येलो इन कलर. वेरी नाइस. थ्री थिंग्स.
4: ऑरेंज के अंदर के पार्ट.
3: ऑरेंज के अंदर के पार्ट भी सर ऑरेंज ही होते हैं, वो येलो नहीं होते हैं. आप कहाँ से ये बासी सामान खरीद रहे हो? अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे. तीन ऐसी चीजें जो आप करते हैं जिससे बीवी बहुत गुस्सा होती है आप पे.
4: मोबाइल टॉयलेट में लेके जाना, लंबी बात करना, ज्यादा वीकेंड का काम करना.
3: लंबी बातें करते किससे हो बाथरूम में जाके?
4: बाथरूम में नहीं, मोबाइल. बाथरूम में जाके स्क्रॉलिंग करता हूं.
3: हां तो लंबी बातें किससे कर रहे हो आजकल?
4: घर वालों के साथ, इंडिया में वगैरह.
3: घर वाले ही है ना, कोई बाहर वाला तो नहीं है ना.
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: It is 10:22 on the clock. Let's take a look at E11 Sheikh Zayed Road. Par achanak there is quite a lot of traffic. Aaj aapko milega at Alnada Interchange 1 pe. Traffic badh gaya kam hone ki bajaye. There is a 6 to 9 minute delay out there. Then there is a 311 is much better. Right, as you get out of city center Zaya, heading south, going towards city center Mirdif. Then Sheikh Zayed Road par, you'll find absolutely smooth flowing traffic. No issues heading south. Lekin going north after Dubai Marina, you'll find a bit of slow moving traffic. 44 par, 311 and 44 ka junction at JVC. Yahan par thoda bahut congestion. Everything else seems to be pretty smooth flowing. In case aapko kuch dikhta, give me a call. 800-1062 par.
6: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम? नाम
2: मनी फॉलोज माय ब्रदर।

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast, brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings and a crispy parmesan crust. Order now. Big 106.2. That's my song.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपने कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: For the very first time in Dubai, join Darshan Chopra for an intimate Zikr night. A quiet sanctuary where old Bollywood melodies, timeless nostalgia and stories drift gently into the evening. Zikr, where music becomes a memory we share. Saturday, 10th October at the Junction, Al Sarkal Avenue. Book your seats now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
0: The Big Mix. Miss kiya gaya?
2: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
3: Okay, what's your favorite memory with noodles? Let's see who's in the call. Hello.
4: Hi, Abhi, this is Gaurav.
3: कैसे हैं गौरव आप?
4: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
3: बहुत बढ़िया, नूडल्स की याद आ रही है मुझे भूख लग गई है ये बातें करते करते ही। When was the last time you had noodles?
4: Back when I was in India 2 years ago, we went on a track to Shimla. In Shimla there was a track, so हम वहाँ गए थे. So I remember we were 4 friends and we went to this track and we packed up a lot of Maggie along with us on the track. It was kind of 10-12 packets. में स्टोव वगैरह, कुकर सब कुछ हमने साथ में रख लिया था, कर लिया था। We forget to pack our stuff like कपड़े and everything, but we had to remember that we had to pack Maggie along.
3: भाई ये पहाड़ों वाले नूडल्स की कहानी हमेशा अलग क्यों होती है?
4: या पहाड़ों की मैगी का तो मजा ही अलग है ना।
3: तो आप सब कुछ स्टोव वगैरह लेके गए, फिर फाइनली बनी की बेचारी सड़बड़ गई।
4: यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ, हम 4 लोग गए थे वहाँ पे ट्रैक के लिए, तो हम कम से कम 8-10 लोगों ने मैगी खाई है वहाँ पे।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni, only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 1:07। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247.
1: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
4: इट्स 38 डिग्रीज आउट देयर, लेकिन ह्यूमिडिटी भाई कल से आधी हो चुकी है. थैंकफुली फॉर्चुनेटली कल इट वाज एट 80%, अभी राइट नाउ 43% पे चल रही है.
0: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट alras.me. बिग 106.2. बिग Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: Chase Banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड यू नो, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है वो अपने स्टेप्स पूरे कर रहा होता है, लेकिन जब मेरे स्टेप्स पूरे हो जाते हैं मैं थक जाती हूँ. तो भाई मैं तो बिना सोचे समझे कैब में कर लेती हूँ भाई ट्रैवल. लेकिन जब मुझसे मेरे घर वाले पूछते हैं भाई इतना क्या आपको कैब में ट्रैवल करने का पड़ा, आप इतने क्यों खर्चते हो पैसे. नहीं आएगा यार समझ उनको, क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं है. जो यहाँ रहते हैं उनको पता है हाउ फीजिबल इट इज. लेकिन अगर बात हो रही है चीप फेयर्स की, तो भाई चंद पैसे बचाना किसको नहीं पसंद है. दुबई कॉमीटर्स के लिए हियर्स अ टिप टू सेव मनी अपनी टैक्सी राइड्स पर. अगर आपको चीपर फेयर्स चाहिए, आपको पीक रश आवर्स पे नहीं जाना है, ट्राई बुकिंग ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स जब डिमांड कम है. एंड आरटीए हैज इंट्रोड्यूस दिस मोर फ्लेक्सिबल फेयर स्ट्रक्चर के डिमांड पैटर्न मैच हो जाए, अवेलेबिलिटी बढ़ जाए. हैविंग सेड दैट, आप मुझे ज़रा बताओ कि अगर आप महीने में कभी ना कभी कभी कभार या फिर रोज कैब्स यूज़ करते हो, टैक्सीज यूज़ करते हो, कितना बिल आता है यार, ज़रा मुझे बताओ, ताकि मेरा दिल हल्का हो कि मैं इतना नहीं स्पेंड करती हूँ. 800-1062 पे कॉल करके मुझे बताओ हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन अ टैक्सी पर मंथ. 800-1062 इट इज. एक्चुअली मी टू टैक्सी वाले भैया, जब मैं बहुत थक जाती हूँ और मुझे बस चलना नहीं होता है. 800-1062 इज अ टोल फ्री नंबर, कॉल मी हियर एंड देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड आई एम टेलिंग यू भाई ये सिर्फ और सिर्फ दुबई में हो सकता है. व्हाट अ लाइनअप. ये शाम जहाँ दो लेजेंडरी वॉइसेस साथ में आने वाली हैं एक ही स्टेज पर. किसकी बात कर रही हूँ मैं? मस्त होके गाएंगे ये आबिदा परवीन की बात कर रही हूँ मैं. Pantheon presents Borderless Melodies featuring the legendary Abida Parveen and Kailash Kher live in concert. किसने सोचा था यार अबिदा परवीन कैलाश खेर एक ही स्टेज पर. टू लेजेंडरी आर्टिस्ट्स वन स्टेज. मार्क योर कैलेंडर्स फॉर 13th नवंबर एट दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. टिकट्स अवेलेबल हैं प्लैटिनम लिस्ट पर. वेट मत करना, अपनी पहले ही बुक करवा लो इससे पहले सोल्ड आउट हो जाए. ब्रॉट टू यू बाय हॉप इवेंट्स, क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस दैट स्टे विद यू लॉन्ग आफ्टर द म्यूजिक एंड्स. इवेंट मेड लार्ज विद बिग 106.2. टू लेजेंड्स वन स्टेज अबिदा परवीन कैलाश खेर 13th नवंबर. अपनी टिकट्स अभी के अभी बुक करो. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड यू नो हाउ वियर्ड इट इज कि हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बातें इतनी ज्यादा करते हैं कि हमें लगता है हमारे चाचे के भतीजे के बेटे तो हैं. अभी रिसेंटली मेरे कलीग ने मुझसे पूछा, यार वो नीतू की बेटी का नाम क्या है. लाइक हू नीतू, मतलब मेरी बुआ का नाम नहीं है भाई नीतू, क्या बातें कर रहे हो. नहीं, नीतू कपूर की बेटी का नाम क्या, वो भूल गया था, रिद्धिमा कपूर. क्या मतलब, कैसे हमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की लाइफ में घुसे हुए हैं, डूबे हुए कंज्यूम करते हैं सेलिब्रिटीज का कंटेंट. हमें लगता है एक्चुअली हमारे चाचा के भतीजे के बेटे हैं. बाय द वे, कियारा अडवाणी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा आर एक्सपेक्टिंग येट अगेन विद अनदर बेबी.
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है.
1: तुम्हें लग रहा था मैं सिर्फ अपने कुलीग को डिस कर रही हूँ, तुम्हें और मुझे दोनों को डिस कर रही हूँ. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: Ukraine. Parliament in Kosovo has resolved a long-running political crisis minutes before a deadline requiring a new general election. The government secured backing for its candidate to be president. In return, it agreed to demands for a new law restricting the scope of Kosovo's war crimes court. An American former spy has admitted to defrauding the US government of nearly $200 million. David Rush used his senior position in the CIA to obtain luxury properties and hundreds of gold bars. The carmaker JLR has unveiled a new electric Jaguar model in New York as part of a major relaunch of the brand. 2 years ago, critics on the political right ridiculed a Jaguar advert marking the firm's switch to all electric vehicles. And the Oscar-winning actress and one of the last surviving survivors of the golden age of Hollywood, Eva Marie Saint, has died. She was 102. Saint starred in On the Waterfront and Hitchcock's North by Northwest.
1: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
2: तुम भी सॉरी तान्या हाथ में पॉम पॉम लेके लड़कों के लिए चिल्लाना मेरा स्टाइल नहीं है वो मेरे लिए चिल्लाए सीटी बजाए दैट्स नॉट माय थिंग
1: शी इज बबली ब्रिंगिंग फ्रेश एनर्जी एंड अ होल लॉट ऑफ फ्लेवर द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae
3: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड इन दिस आवर कॉल जाने वाला है बिग चेक इन टू जर्मनी के विनर को कौन होगा या होगी भाई आई एम रियली एक्साइटेड उनकी आवाज सुनने के लिए जब उनको पता लगेगा कि दिस इज एन ऑल एक्सपेंस पे ट्रिप और वो जा रहे हैं हमारे साथ बिग टीम के साथ बिग चेक इन टू जर्मनी करते हैं कॉल सुनाऊंगी आपको अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:06।
1: Bollywood.

0: You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni. On Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड आज होने वाला है अनाउंसमेंट फॉर द बिग चेक इन टू विनर. किसकी सीट कंफर्म्ड है. इतने महीनों से हमने बहुत सारे नाम रजिस्टर करे थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर्स जिन्होंने इतना साथ दिया है और कौन जाने वाला है हमारे साथ टू बिग चेक इन टू जर्मनी. शौक यार हर किसी के यही होते हैं. क्रेजी ट्रिप एंड क्रेजी ट्रिप और बिग चेक इन टू जर्मनी. इस क्रेजी ट्रिप पे कौन चलने वाला है हमारे साथ बताने वाली हूँ. कॉल करने वाली हूँ उस विनर को. धक धक धक धक अगर आपके दिल में हो रहा है आपका नाम रजिस्टर हुआ था आप सुन रहे हो बस और मैनिफेस्ट करते रहो. क्या पता आप ही को फोन जाना हो. कीप इट लॉक टू बिग 106.3.

0: Now lease a brand new SUV from Jetord and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: The Big Mix with Avni. On Big 106.2.
3: The Beat of Bollywood.
4: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैंने कॉल कर लिया है सार्थक को। हाय सार्थक।
5: हाय, हाउ आर यू अवनी?
4: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
5: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
4: क्या करते हो आप सार्थक?
5: आई वर्क इन होटल, आई लुक आफ्टर अ रेस्टोरेंट, आई एम अ रेस्टोरेंट मैनेजर।
4: ओ वाओ, मतलब रोज बढ़िया बढ़िया खाना।
5: हलवाई कभी अपनी दुकान से मिठाई नहीं खाता तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, बट फॉर गेस्ट या इट्स अ डिलाइट, बट फॉर मी आई थिंक आई मिस माय मॉम्स फूड एंड एवरीथिंग। सो या
4: फेवरेट फूड दाल खिचड़ी होगा ना?
5: टू बी ऑनेस्ट आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मेरा छोले भटूरे और आलू पराठे हैं।
4: अरे भाई याद मिलाओ, मैं भी दिल्ली, मैं भी
5: दिल्ली।
4: अच्छा मुझे बताओ सार्थक, आपको फिर स्टेकेशन पे जाने की जरूरत पड़ती है?
5: यस, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं स्टेकेशन पे जाके मैं थोड़ा अपना वर्क मोड सोचता हूँ कि बाहर रखूँ, बट मैं वहाँ पे जाके भी बहुत जज करता हूँ लोगों को कि मतलब ओ अच्छा ये ऐसे करते हैं, अच्छा हम भी ऐसा कर सकते हैं, लाइक टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड टू लाइक जस्ट दैट, बट आई डोंट गिव बैड रिव्यूज ऑर एनीथिंग, आई एम जस्ट लाइक ओके।
4: काफी ऑब्जर्वेंट हो आप। अच्छा अभी आप कहाँ पर हो?
5: अभी मैं काम पर हूँ।
4: काम पर ही हो, होटल पे ही हो?
5: हाँ जी।
4: फिर आपकी होटल टू होटल करवा दें वापसी?
5: कहाँ भेज रहे हैं आप मुझे?
4: हम कहाँ भेज रहे हैं? अरे आपने किसके लिए पार्टिसिपेट किया था? बिग चेक इन टू जर्मनी के लिए किया था ना?
5: मुझे थोड़ा एकदम हम्बल सा साउंड करना पड़ेगा ना, बिकॉज़ अगर मैं एक्साइटमेंट दिखा दूंगा तो फिर
4: नॉट एट ऑल, यू शुड बी एक्साइटेड, यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर बिग ट्रैक इन टू जर्मनी।
5: थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, दिस इज सो गुड।
4: ये सोच रही हूँ कि आप स्टेकेशन इतने आपने एंजॉय कर लिए होंगे, तो जर्मनी जाके आप क्या क्या जज करने वाले हो मुझे पहले बता दो आप।
5: जर्मनी जाके जज नहीं, जर्मनी जाके ऑब्वियसली आई विल गो टू बायर्न म्यूनिख, आई टोल्ड सेड आल्सो अबाउट दिस, एंड आई थिंक आई विल गो टू बायर्न म्यूनिख स्टेडियम फॉर श्योर, एंड आल्सो वेयर आई वर्क वी हैव ओपन्ड अ न्यू प्रॉपर्टी इन जर्मनी आल्सो, सो फॉर श्योर आई विल विजिट देयर आल्सो।
4: मतलब काम का काम भी करके आओगे भाई, बहुत प्रोडक्टिव हो यार, दिल्ली से हो ना, पता लग गया मुझे
5: भाई। बिल्कुल बिल्कुल।
4: और क्या प्लान है जर्मनी के? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई वाज सो एक्साइटेड टू कॉल यू एक्चुअली, कि भाई जिसको जिसका लग गया है, जिसकी सीट कंफर्म हो गई है, कैसा फील हो रहा है आपको?
5: मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। आज ही मेरे को बोला था कि थोड़ा परमिशन वर्मिशन चाहिए होगी, तो मैंने कहा जरा मैं बात करके आता हूँ अपने डायरेक्टर से। तो उन्होंने पहले बोला कि कैसे कैसे, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है सर, तो आप बताइए कैसे करना है। तो फिर बस वही है, ही इज ओके विद इट, ही इज टोटली फाइन विद इट, ही इज वेरी हैप्पी अबाउट इट, सो या ही इज ओके विद इट, आई होप ही इज लिसनिंग समवेयर।
4: वाओ, तो सार्थक की छुट्टी कन्फर्म है, ठीक है, सार्थक के प्लान्स कन्फर्म है, सार्थक का वो कन्फर्म है कि आप वो जाके करने के वाले हैं, अब आपकी पैकिंग
5: थोड़ी जैकेट देख रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट दुबई में सेल शुरू हो चुकी है, सो नॉट सेल, विंटर क्लोथिंग इज आउट नाउ, सो पीपल कैन गो एंड बाय स्टफ नाउ फॉर विंटर। सो या,
4: सो दैट्स हाउ सार्थक मैनिफेस्टेड फॉर बिग चेक इन टू जर्मनी। अगर आपको भी मैनिफेस्टेशन पावर्स चाहिए ऐसी, तो आपको भी ये काम करना चाहिए, है ना?
5: बिल्कुल बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज क्या पता मैं आलू के पराठे खा लूं डिनर में।
4: ये तो आप खुद भी बना के खा सकते हो, इसमें मैनिफेस्टेशन क्या करेगी?
5: नहीं, मैनिफेस्टेशन जरूरी है, क्योंकि उसके लिए भी एफर्ट लगता है ना बनाने के लिए,
4: मन लगता है, मन बनाना पड़ता है इसके लिए,
5: मन।
4: थैंक यू सो मच सार्थक, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू एंड सी यू ऑन द ट्रिप नाउ।
5: For sure. Thank you so much, Avni. Thank you so much. Have a lovely day.
4: Thank you. Bye.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 हिस्ट्री
1: बनाएंगे। Autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure. Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor Danube Properties. Title sponsor Papa John's. Associate sponsors Ford and Sharaf DG. Ethnic partner Bavri and Kora. Jewelry partner Meena Jewelers. Travel partner AFC Holidays. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
3: रोड पर आपको हैवी ट्रैफिक मिलेगा इन सेक्शंस अराउंड जबील पार्क एंड इवेंट्स राउंड अबाउट। इसके साथ साथ अलखेल रोड भी बहुत बिजी है विद हैवी ट्रैफिक फ्रॉम मैदान टुवर्ड्स दुबई हिल्स एस्टेट। इज ऑल्सो कंजेशन अराउंड रसल खोर एंड दुबई प्रोडक्शन सिटी एग्जिट टुवर्ड्स E311। E311 पर देर इज मॉडरेट ट्रैफिक अराउंड मिर्दिफ एंड ग्लोबल विलेज। स्लोअर मूवमेंट है बिटवीन मोटर सिटी एंड द JVC एग्जिट टुवर्ड्स अलखेल रोड। कहीं और फंसे हो लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर।
2: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. Big 106.2.

0: तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड क्योंकि मैं भी इस जेंजी एरा से हूँ, मैं भी एक जेंजी हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि यस आई नो कि हमारी जनरेशन जो है ना बहुत लेजी है, बहुत ही लेजी है. हम स्मार्ट वर्क में विश्वास करते हैं, हार्डवर्क साथ साथ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब हमें कोई वर्ड नहीं याद आता, हम इतने लेजी हैं कि हम सेंटेंस कंप्लीट करते करते ना वर्ड भूल जाते हैं. अब अगर आप वर्ड भूल जा रहे हैं तो फिर देर इज़ अ न्यू वर्ड जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी सिचुएशन, एनी फीलिंग या फीलिंग, लेकिन आप वर्ड भूल चुके हो. एंड एक्चुअली दैट वर्ड इज न्यूट, न्यूट, NEWT, न्यूट. अगर आप फील कर रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड लेकिन वर्ड नहीं याद आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन, फ्यूरियस, अनॉय, याद नहीं आ रहा है, आई एम जस्ट फीलिंग न्यूट. भाई इतने लेजी तो मुझे लगा नहीं था कि हमारी जनरेशन है, लेकिन अगर आपने इन्वेंट कर ही दिया, डिस्कवर कर ही दिया ये वर्ड, देन आई एम अप फॉर इट. आई एम फीलिंग वेरी न्यूट. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.
2: यो यो यो यो, करनोजला.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 3:06।
1: Bollywood.

0: Made Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड 3 PM पीक लंच आवर टाइम वाली गेम खेलने का वक्त आ चुका है. सोचा था मैंने भाई खाते पीते अच्छे अच्छा खाना हेल्दी फूड खाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी. ओवरनाइट ओट्स खाने के बाद जब सैलेड खाने का वक्त आता है मानता ही नहीं है मन में क्या करूं यार. लंच में मुझे कुछ ना कुछ बढ़िया मंगवाना ही पड़ता है. Having said that, ये गेम खेलने पर आप जीत सकते हो ओपन मूवी टिकट्स. करना क्या है आपको, मैसेज करो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062. मैं करूंगी आपको कॉल और हम खेलेंगे खाओ पियो ऐश करो. इट्स अ रैपिड फायर फूड गेम. आपको दो डिशेस में से कोई भी एक चूज करनी है रैपिडली. 0543091062.
2: होली होली की

0: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert. 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events. Creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mogembo!
3: We'll play the 5 second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. Three things you have to tell in 5 seconds. Three Akshay Kumar ki movies. Shikha.
4: Main Naari Tu Khilari.
3: हाँ.
4: मुझसे शादी करोगी.
3: Time खत्म हो गया. You have to be very very quick, Baba. It's just 5 seconds. I know. Three things that are blue in color. Three things blue in color.
4: Sky, water, my jacket.
3: Oh, nice. Three things that you pick from a hotel room.
4: बॉडी
3: लोशन और शावर जेल से ही काम चलाना पड़ता है.
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM to 9 PM. द बिग थ्रिल विद मानसी. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
5: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है.
6: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ.
0: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
9: 38 डिग्रीज होने के बावजूद टेम्परेचर जो है फील हो रहा है 50 डिग्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी. इट्स 50%. बस कल शाम वाली और ह्यूमिडिटी ना बढ़े यार.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
10: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी. और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ और मैंने आज कॉल किया है अभिषेक को. हाय अभिषेक.
3: हाय गुड आफ्टरनून अवनी, हाउ आर यू?
2: गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूँ और मुझे तो बहुत भूख लग रही है. आपने लंच कर लिया?
3: नहीं अभी तक तो नहीं, मेरा काम तो सेल्स का है, बाहर घूमना तो टाइम नहीं मिलता है.
2: तो ऑर्डर ही करते हो कि घर से टिफिन लेकर आते हो?
3: टिफिन कभी लाता हूँ कभी ऑर्डर करता हूँ, बस चलता रहता है.
2: तो आज का क्या प्लान है?
3: आज मैं स्पेशल लाइक बंगाल, एक्चुअली फ्रॉम बंगाल, तो मैंने एक मटर की स्पेशल की एक डिश मैंने बनाई थी घर पे. तो आज मैं वही लाया हूँ, साथ में पूड़ी जो जिसको हम लोग कचौड़ी बोलते हैं, साथ में वो लाया हूँ.
2: दिस इज एक्चुअली वेरी फैंसी लंच. ये आपने जैसे मुझे बताया है, डिस्क्राइब किया है. मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन मेरा भी मन कर रहा है मैं खा लूँ.
3: ठीक है मैं भिजवा देता हूँ.
2: No, thanks, thank you. We'll start playing copy ash karo. तो मैं आज आपको फैंसी लंच ऑप्शंस ही देने वाली हूँ, ठीक है? बी रेडी. व्हाट वुड यू चूज अभिषेक, ट्रफल मशरूम पास्ता या फिर बुर्राटा?
3: मशरूम पास्ता.
2: मशरूम पास्ता या फिर सुशी?
3: मशरूम पास्ता.
2: मशरूम पास्ता या फिर एवोकाडो टोस्ट?
3: मशरूम पास्ता.
2: मशरूम पास्ता या फिर पेस्टो पास्ता?
3: नहीं मशरूम पास्ता.
2: मशरूम पास्ता या फिर डिमसम लंच?
3: डिमसम फिर भी है, उसी लाइन में जाएगा मशरूम पास्ता.
2: मशरूम पास्ता. ओके. मशरूम पास्ता या फिर आर्टिजनल ट्रफल मशरूम पिज्जा?
3: पिज्जा.
2: पिज्जा या फिर जो आप लंच में लेकर आए हो वो?
3: जो लंच में लेकर आए हो वो बहुत मेहनत से बनाया है.
2: जो ये इंसान खुद खाना बनाता है ना उसी को दिक्कत होती है, मैं बता रही हूँ. बट मुझे नहीं होती यार, मैं खाना बना के लेके आती हूँ, मेरा मन करता है, मुझे पता है मैंने कैसा बनाया तो मैं ना ही खाऊं अच्छा है.
3: नहीं नहीं मैं काफी टाइम से हूँ, अकेले रहता हूँ तो कभी कभी खाना खुद से बनाना कभी बाहर से मंगवाना तो ऐसा चलता रहता है.
2: अच्छा आपकी बेस्ट डिश कौन सी है अभिषेक?
3: दाल चावल.
2: दाल चावल वो बहुत ही बेसिक हो गया, ये तो फैंसी नहीं हुआ कुछ.
3: बस मुझे तो वही कभी भी भूख लगी फटाफट बना लो फटाफट खा लो.
2: अभी कुछ तो ये बोलते
3: मेरे टॉप लिस्ट में रहता है.
2: अभी कुछ बोलते आप फैंसी में बोलती भिजवाओ यार, दाल चावल नहीं खाने मुझे, दाल चावल मैं मैश पोटैटोस ऑर्डर करूंगी अभी. Thank you so much Abhishek for calling.
3: Thank you so much. Have a great day.
2: Bye. Thank you. If you want to play Khaopi Ash Karo with me, all you have to do is give me a message on this WhatsApp number 0543091062.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: That's what girls do जब उनके पास बहुत सारी टी होती है अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. और जो ये गर्ल मैथ है ना, ये दिस गर्ल बॉन्ड, फीमेल फ्रेंडशिप्स, ये बहुत अनोखी है यार. जब भी आपको अपना दिल हल्का करना होता है ना, आप अपनी सबसे पहले एक फीमेल फ्रेंड ही पकड़ते हो, एंड इफ नॉट तो आप अपनी बहन को सबसे पहले पकड़ते हो. एंड दिस टाइम कॉफी विद करण पर सीजन 9 पर यही सिस्टर डुओ आने वाला है. गाने ना मैं अपने होने वाले बॉयफ्रेंड या फिर हुए हुए वाले बॉयफ्रेंड को ना डेडिकेट करूं, जो मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स को डेडिकेट करती हूँ. कॉफी विद करण सीजन 9 पर आने वाली है आलिया भट्ट एंड उनकी बहन शाहीन भट्ट. एंड ये डुओ बहुत बार हमें बहुत सारी वीडियोस में, रील्स में, फोटोज में, इंटरव्यूज में खुद को एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखता है. एंड दिस टाइम कॉफी विद करण, द रियल टी गोना बी स्पिल इन कॉफी विद करण सीजन 9 जो शुरू होने वाला है अक्टूबर 14 से. लेट्स सी और कौन कौन आने वाला है.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: रहे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: जैसे ही कल शाम को ह्यूमिडिटी थी ना भाई, मैं आज शाम से पहले ही खौफ में हूँ। इट्स 37 डिग्रीज आउट देयर विद ह्यूमिडिटी राइट नाउ एट 54%, लेकिन शाम तक और बढ़ जाएगी, सो स्टे हाइड्रेटेड।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2 बिग।

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ. कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे. आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं. हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो.
0: The Big Mix with Avni on Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। एंड क्या हुआ यार, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो कुछ तो रास्ते मुझे पता है। अब शारजा में पार्शली ओपन हो चुकी है ये रोड बिटवीन यूनिवर्सिटी सिटी एंड द एग्जीबिशन ग्राउंड। हालांकि अभी इतिहाद रेल स्टेशन का काम चल रहा है, बट दीज टू लेन्स इन ईच डायरेक्शन आर नाउ ओपन, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया 17 थ्रू यूनिवर्सिटी ब्रिज एंड द डाइवर्जन टूवर्ड्स मलिहा रोड, वो सेम टू सेम रहती है। ये कल से शुरू हुआ है अरेंजमेंट, नया ट्रैफिक का रहेगा अंटिल नवंबर 29th। देख लो यार, शॉर्टकट बताने में मैं माहिर हूँ। आंखों के सामने रहने के लिए कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट ready for this।

0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni. On Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड जितनी मुझे गेड़ी पसंद है ना यार, ड्राइविंग पसंद है, खुद नहीं पैसेंजर प्रिंसेस वाली ड्राइव पे जाना पसंद है. शुड हैव सेड दैट.
3: केसरिया तेरा इश्क है पिया.
2: इट्स अ थेरेपी फॉर मी यार, मुझे बहुत मजा आता है. जितना मैं ड्राइव पे जाती हूँ लोग मुझे उतना ही बोलते रहते हैं यार. पर अगर आप भी उनमें से एक हो, आपके लिए गुड न्यूज है. नाउ यू कैन एक्चुअली लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी फ्रॉम जेटोर एंड स्कोडा विद प्राइजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1,999 दिरहम पर मंथ फॉर अ 12-month प्लान. करना कुछ नहीं है, बस आपको विजिट करना है selfdrive.ae पर. TNC अप्लाई. एंजॉय योर ड्राइव.

0: 105.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure. Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
2: Missed your morning buzz?
3: Hey,
2: yes or no?
4: Usually what happens on the 7th of October? Is it like somebody's birthday? Is it like a special day you think today, Wednesday? Or just, I mean, are you got something special planned or what?
5: No, nothing much planned. I have a lot of meetings lined up today.
4: Huh. चलो वेरी गुड यार, लास्ट टाइम मुझे काफी मजा आया आपसे बात करके, तो मैंने कहा कॉल करके मेरा, आई वाज जस्ट फीलिंग अ बिट ऑफ टुडे, सो आई सेड लेट मी जस्ट कॉल अनुष्का एंड यू नो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा.
5: अच्छा, वाओ.
4: चलो एंजॉय योरसेल्फ एट वर्क, ओके?
5: ठीक है, थैंक यू.
4: ठीक है अनुष्का, कांग्रेचुलेशंस, यू गो टू जर्मनी. टाइम पास कर रहा हूं मैं आपके साथ. यू हैव वन एंड ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप टू जर्मनी. अब बताओ कैसा लग रहा है? बल्ले बल्ले. जल्दी आपको जो पैक करना है, ट्रेडमिल, डंबल्स, यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैंड्स वैंड सब कुछ डालो सूटकेस के अंदर एंड वी आर हेडिंग आउट टू जर्मनी.
5: थैंक यू सर सो मच. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, दिस मेड माय डे डूड, लिटरली माय
4: डे. अरे डे सिर्फ डे, आई हैव मेड योर मंथ दिस एंटायर फाइनेंशियल ईयर. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? दिस इज गोइंग टू बी द ट्रिप दैट यू गोइंग टू बी रिमेंबरिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. गारंटी हमारी है.
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM. द बिग Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय सेल्फ ड्राइव डॉट ए.
6: इवनिंग रश शुरू हो चुका है. दिस ट्रैफिक बिल्डिंग अप ऑन शेख जायद रोड, स्पेशली अराउंड जबील एंड देवेंस राउंड अबाउट. उसके साथ साथ अलखील रोड पर भी हैवी ट्रैफिक मिलेगा आपको फ्रॉम मैदान टुवर्ड्स दुबई हिल्स, वाइल रसल खोर इज ऑल्सो स्लोइंग डाउन. शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर आपको मोटर सिटी एंड JVC कनेक्शन पर भी ट्रैफिक मिलेगा टुवर्ड्स अलखील रोड. हैवी कंजेशन अराउंड दुबई साउथ. कहीं और फंसे हो लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर.
7: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2. Big. Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: मस्त है।
1: बंदा नहीं, creditmarket.ae ये बिंदास है।
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, जिसका फिलहाल हो रहा जाने का टाइम। पर आपको पता है ना, मैं हमेशा रहती इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन। ऑल यू हैव टू डू इज गिव अस अ फॉलो ऑन 106.2 बिग एफएम का पेज एंड creditmarket.ee पर वापस आते हुए। यू ऑलरेडी नो राइट, अल्फ्रेड फ्रॉम insurancemarket.ee एंड नाउ अल्फ्रेड कैन एक्चुअली हेल्प यू कंपेयर क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, मॉर्गेजेस भी। करना कुछ नहीं है, बस आपको विजिट करना है creditmarket.ee पर, या फिर आप कॉल कर सकते हो 800 अल्फ्रेड पर। अब कल मिलती हूँ फिर से द बिग मिक्स 1 to 5. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, this is The Big Thrill. मैं हूँ मानसी, all set to keep you company here until 9. जब आप दो ढाई ढाई घंटे के ट्रैफिक में फंसते हो, आपके साथ I am here to keep you company and to start with every single evening while you're heading back home. You're stuck in the jam, we jam here with the karaoke. गाना आए या ना आए, सानू की हमें सिर्फ गाना है. अगर आप गाना गाने का शौक रखते हैं तो बाथरूम से अपना टैलेंट बाहर निकालिए. गिविंग यू चांस टू होल्ड योर ओन कॉन्सर्ट राइट हियर ऑन बिग 106.2 इन just a bit, kick-starting Wednesday evening.

अपना टैलेंट बाहर निकालिए, गिविंग यू चांस टू होल्ड योर ओन कॉन्सर्ट राइट हियर ऑन बिग 106.2 इन जस्ट अ बिट, किक स्टार्टिंग वेंसडे इवनिंग विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:06।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800-ALFRED. Alfred simplifies money.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening. This is the Big Thrill. Mansi. Wednesday aati hi bahut khushiyan aa jati hain kyunki do din aur phir weekend. And mera plan as an adult weekend pe hota hai to do nothing. या ऑफ कोर्स घर के काम होते हैं. मैं जिंदगी के उस दौर में पहुंच गई हूँ कि रादर देन थिंकिंग कि कहाँ पार्टी करनी है, मैं सोचती हूँ इस हफ्ते मैं क्या साफ करूंगी अपने घर पे. फिलहाल वाले हेडिंग बैक होम एवरी सिंगल इवनिंग. हम यहाँ पे माहौल बनाते हैं, गाने गाते हैं विद द कारियोकी.
1: कारियोकी
2: अगेन 90s का गाना. 1995 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड कल इस मूवी को पूरे 31 साल दैट इज 31 ईयर्स हुए हैं. बॉबी देओल ट्विंकल खन्ना का ग्रैंड डेब्यू विद दिस वन एंड ऑफ कोर्स द म्यूजिक इवन आफ्टर 31 ईयर्स इज स्टिल अ रेज.

0: अब ओजी बरसात फैंस को ये गाना याद होगा, अगर याद आ गया है तो 800-1062 इज द नंबर टू डायल. वी आर कारियोकिंग.
1: कारियोकी

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, you have Big Thrill and while you're stuck in the jam, we jam here with the karaoke. 90s ka gana hai and kal hi is movie ko 31 years pure hue hai. Joining us right now is Vicky. How are you?
2: I'm super duper fine. How about you, Mansi?
1: I am good. I know, ek hi banda hai jo energy match kar pata hai shaam ko after a long tiring day. बड़ा अच्छा था सर, आपका फोन आ गया और अच्छा हो गया. फिलहाल गाना आपने पहचान लिया है, गाना बहुत कमाल है और आप गाते भी अच्छा हैं. तो विदाउट फर्दर अडू विकी की आवाज में सुनते हैं.
0: Karaoke.
1: All right.
3: तेरी अदाओं पे मरता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ, तुझसे विछड़ने से डरता हूँ, तुझसे विछड़ने से डरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, तुझे लव मैं करता हूँ.
1: Very nice as always. गाना कितना अच्छा है ये.
2: Yeah, super amazing. मैंने सुना ढक से, मैंने पहली कॉल मिला सच में.
1: बहुत ही कमाल गाना. कल इस मूवी को 31 इयर्स भी हुए हैं. बॉबी देओल ट्विंकल खन्ना का डेब्यू.
2: अरे यार 90s के क्या दिन थे. आजकल क्या हो गया लाइफ
1: आजकल. हमें गाड़ी की चाबी का रखी है वो याद नहीं रह पाते हैं, तो हम 100% 90s वाले हैं. कोई है जिसके लिए आपने गाना गाया था 90s में, तेरी अदाओं पे मरता हूँ?
2: अरे यार फर्स्ट लव था साइमा नाम था उसका, उस टाइम में 2 क्लास में था मैं.
1: क्लास सेकंड में कहाँ से आपको मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता होता है. क्लास सेकंड में था मैं और साइमा नाम था उसका. थैंक यू सो मच विकी. आपकी कहानियां ना मतलब बहुत ही AI जनरेटेड सी लगती हैं मुझे. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग द सॉन्ग.
2: Take care.
1: Bye. Bye. Yeah, yeah, karaoke. If you enjoy singing and you love this song, give me a call. 800-1062 par.
0: Karaoke. Big 106.2. Fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पर जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: बेबी दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। आम हासला ए वन लाइफ स्टाइल ए वन, ऐ मुझे न सिखाओ घंटे पे फेम, एक ही बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरों की छातियों पे रख दीवे बाल के टोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देरा दून, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं।

0: keeping you company with some fantastic music. गाने सुनने के साथ साथ हम यहाँ पे गाना गा रहे हैं with the karaoke.
1: Karaoke.
0: अगर आपके अंदर का भी सिंगर बाथरूम से बाहर आने के लिए बेकरार है, then this is it. Give me a call on 800-1062 coming up. अफसाना खान, अमित कुमार, सपना मुखर्जी ओरिजिनल आवाजें रिक्रिएटेड फॉर धुरंधर 2 इसी के साथ.
2: तड़पावे साडी जान कट जावे तेरा लाल गगरा.
0: देखो मैं भी नॉन सिंगर हूँ बट मैं गाती हूँ. यही प्लेटफॉर्म आपके पास भी है. अगर आप भी गाना चाहते हैं, इट इज द टाइम फॉर कैरियोकी.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड,
2: क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
3: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: मैंने तो शॉपिंग भी शुरू कर दी है क्योंकि जर्मनी की सर्दियों के लिए शॉपिंग जरूरी है. Well, it's time to fly the team back to Germany. Oh my God, I'm so looking forward to this one. And of course, a lot of you are. बहुत सारे लोग shortlist हुए हैं. We've already started announcing the final winners, जिन्होंने अपनी seat book कर ली है to this flight to Germany. And अगर आप भी हुए थे shortlist in about an hour, आपको कॉल अगर आता है 800-1062 से, दैट मीन्स 7th अक्टूबर वेंसडे इज द लकीएस्ट डे ऑफ दिस ईयर, बिकॉज आज ही के दिन आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि ऑफिस से छुट्टी लो, क्योंकि हम छुट्टी पे जा रहे हैं, वो भी ऑल द वे टू जर्मनी.
0: द बिग चेक इन टू जर्मनी. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर, डैन्यूब प्रॉपर्टीज. टाइटल स्पॉन्सर, पापा जॉन्स. एसोसिएट स्पॉन्सर्स, फोर्ड एंड शराफ डीजी. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:11।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Good evening. This is the Big Thrill. I'm Mansi. We're playing the 5-second rule. And right now, thodi si ghabrai, thodi si dare dare Sandeep. Hi, Sandeep.
3: Hi, Mansi.
2: Yeah, aap mujhse ghabra rahe ho ki game se?
3: Nahi, main kisi se nahi ghabra raha. I'm okay.
2: Achha, mujhe laga ki thoda aise ekdam rules bata do. Kya ho raha hai? Kya karte ho, Sandeep, aap?
3: Mansi, I'm a chartered accountant.
2: Arre! आपसे तो लोग घबराते हैं सर, मैंने गलत एनालाइज कर लिया. लोगों का पैसा संभालते हैं ये और संभाल के उनको टैक्सों से बचाते हैं, यही करते हैं ना.
3: राइट राइट.
2: यार जब आप दूसरों का इतना पैसा हैंडल करते हो, कभी कोई बहुत ऐसा अमीर बंदा आ जाता, लगता नहीं कि यार इसके हिस्से का मुझे ही दे देता ऊपर वाला? मतलब जलन नहीं होती है?
3: नहीं नहीं होती है.
2: हाय, कितने अच्छे संस्कारी टाइप के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप. तो संदीप, हम खेलेंगे 5-second rule. It's a fun game. आपको मिलेंगे 5 सेकंड. यहाँ पे मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, आपने 3 चीजें बतानी है फटाफट, हाँ, बट 5 सेकंड के अंदर. तैयार हो?
3: ओके,
2: ऑल द बेस्ट.
1: 5-second rule.
4: Oh yeah.
2: 3 कलर्स जो बी से शुरू होते हैं.
3: ब्लू,
2: ब्लू, ब्लू, ब्रिंजल,
3: ब्लैक,
2: ब्रिंजल,
3: ब्लैक.
2: टाइम खत्म हो गया. ब्रिंजल कौन सा कलर होता है भाई? ब्रिंजल सब्जी होती है. थ्री थिंग्स दैट आर ग्रीन इन कलर एंड आप खा भी सकते हैं. सोलो. अरे अरे अरे अरे. नेम 3 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स. 3 चीजें जो उड़ जाती हैं.
3: मक्खी, मच्छर.
2: मक्खी. मैंने बोला 3 चीजें जो उड़ सकती. कह रहे मक्खी.
3: एरोप्लेन.
2: संदीप यार अब बहुत ही क्यूट. 3 चीजें जोड़ सकती है मक्खी. नेम 3 फूड्स दैट आर क्रंची.
3: चिप्स एंड फ्रेंच फ्राइज.
2: सो क्यूट यार संदीप. अच्छा 3 चीजें जो आप जब प्यार में होते हैं ना, मोहब्बत में होते हैं, प्यार आता है जब बीवी पे तब करते हैं.
3: तो
2: हो गया सर, टाइम खत्म हो गया. सर टाइम खत्म हो गया. मैं तालियां बजाना चाहती हूँ. बेस्ट था. 3 चीजें जोड़ सकती है मक्खी. इससे अच्छा जवाब किसी ने आज तक नहीं दिया. संदीप बड़ा मजा आया आपसे बात करके, गेम खेल के. जवाब आपने कुछ खास दिए नहीं, बट आई होप यू हैड फन प्लेइंग द गेम एज वेल.
3: या आई
2: हैड. दिस वाज एपिक. 3 चीजें जोड़ती है मक्खी. Alrighty, have a great evening. Yeah, 5-second rule. आपने खेलना है तो एक ही रूल है, मुझे कॉल करना है 800-1062 पर.

0: மஸ்தானா மன்ஷோக் யரிந்தானே
1: துனியா உட் பட்டாங்கா.
2: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events, creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2.
3: InsuranceMarket.ae for insurance. creditmarket.ae for banking. holidaymarket.ae for travel. Get started online or call 800 Alfred 24/7.
2: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae. Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umalkwain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit uaqftz.com. Missed your morning buzz? Yes or no?
4: Usually what happens on the 7th of October? Is it like somebody's birthday? Is it like a special day, you think, today or Wednesday? Or just I mean, are you got something special planned or what?
5: Nothing much planned. I have a lot of meetings lined up today.
4: Haan. चलो वेरी गुड यार. लास्ट टाइम मुझे काफी मजा आया आपसे बात करके, तो मैंने कहा कॉल करके मेरा आई वाज जस्ट फीलिंग अ बिट ऑफ टुडे, सो आई सेड लेट मी जस्ट कॉल अनुष्का एंड यू नो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा.
5: अच्छा, वाओ.
4: चलो एंजॉय योरसेल्फ एट वर्क. ओके,
5: ठीक है, थैंक यू.
4: टेक केयर अनुष्का, कांग्रेचुलेशंस. यू गो टू जर्मनी, टाइम पास कर रहे हो मैं आपके साथ. यू हैव वन एन ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप टू जर्मनी. अब बताओ कैसा लग रहा है? बल्ले बल्ले. जल्दी आपको जो पैक करना है, ट्रेडमिल, डंबल्स, यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैंड्स वैंड सब कुछ डालो सूटकेस के अंदर एंड वी आर हेडिंग आउट टू जर्मनी.
5: थैंक यू सर सो मच. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, दिस मेड माय डे डूड, लिटरली माय डे.
4: अरे डे सिर्फ डे, आई हैव मेड योर मंथ दिस एंटायर फाइनेंशियल ईयर. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? दिस इज गोइंग टू बी द ट्रिप दैट यू गोइंग टू बी रिमेंबरिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. गारंटी हमारी है.
2: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 11 AM. द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
8: 36 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 31 एंड ह्यूमिडिटी बढ़ गई है 62% पर.
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is the Big Thrill. We're playing the 5-second rule, and joining us is Mr. Aamir. मैंने बोला आमिर खान, कहते नहीं आमिर जान. तो कितनों की जान है आप? ये देखो, ये जो इन्होंने एकदम संभाला है ना, घुमा के, बहुत बढ़िया. करते क्या है आप आमिर?
2: वेरी नाइस.
1: हाउ इज द बिजनेस? गुड. फिलहाल हम खेलेंगे 5-second rule, मजेदार गेम है. आपको मिलेंगे 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ऑल द बेस्ट.
0: 5-second rule.
3: Oh yeah.
1: Quickly name 3 करिश्मा कपूर की मूवीज. टाइम खत्म हो गया सर.
2: Yeah, I'm not very good in movies.
1: Achha. 3 fruits with the letter A.
2: Apple.
1: Or? Arre. Not very good with fruits also. अच्छा, गाड़ी में आपको अभी लगा था ना कि बहुत ही आसान है, अरे खेल ही नहीं पा रहा है संदीप, है ना? समझ गई.
2: Listening is something different.
1: I know that. 3 celebrities with the letter V.
2: विनोद कुमार.
1: विनोद खन्ना बोलते, विनोद मेहरा बोलते, विनोद कुमार कौन है?
2: जब कोई बात बिगड़ जाए,
1: विनोद खन्ना है सर, वो विनोद मेहरा विनोद कुमार नहीं है. 3 चीजें जो पनीर से बनती हैं.
2: पालक पनीर
1: और ओए होए, नहीं आपसे नहीं हो पाएगा आमिर खान. ये नहीं हो पाएगा आपसे.
0: 5-second rule.
3: Oh yeah.
1: बहुत ही खराब खेला आपने, बहुत ही खराब.
2: Exactly. It's not easy. When you're listening, it looks easy. When you're on air playing, it's totally different.
1: It is very different. But I hope you had fun.
2: Your heartbeat also goes fast too, and it was pleasure.
1: Heartbeat fast, तो सर वो शायद मैं भी कर देती हूँ.
2: Yeah, that's the main reason. Nice, very nice talking to you.
1: Same here, Aamir. You have a great evening. Bye. यही है 5-second rule. आपने खेलना है कि rule है 800-1062 पे कॉल करना है.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae.
4: पूरे देश को पगला दूंगा. अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो.
5: Money follows, my brother.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: And we're playing the 5-second rule. मजेदार गेम है, आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. जॉइनिंग अस इज कीर्ति. कैसा रहा आपका वेंसडे कीर्ति जी?
2: It was good. It was very hectic. I had a busy schedule.
1: Very nice. What do you do?
2: I work for an insurance company.
1: Oh, nice. तो क्लेम वे मतलब काफी मांग रहे हैं आजकल लोग.
2: हाँ, मतलब अच्छा काम है. That's more important.
1: Very important. Very, very important. I think busy रहना, काम आना is a blessing in itself. फिलहाल कीर्ति, while you're heading back home, we'll play this fun game. It's called the 5-second rule. आपको मिलेंगे 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर. तैयार हो?
2: Yes.
1: All the best.
0: 5-second rule.
3: Oh yeah.
1: Name 3 things that start with the letter U.
2: Umbrella, all? Uniform, okay. And unicorn.
1: Okay, almost there. Not bad. 3 things that are made out of milk and sugar.
2: Custard.
1: Okay.
2: Mawa.
1: Mawa is not made out of milk and sugar.
2: Milk and sugar.
1: कोई आराम से सांस ले लो.
2: I'm just too competitive, right?
1: I know. I can feel that. But आपको कोई खास competition नहीं है. आपसे पहले जो दो brothers आए थे, उन्होंने तो बहुत ही खराब खेला है. So you'll be the best so far. Three things that are made out of fermentation.
2: Fermentation, idli, dosa,
1: and dhokla vada. But time खत्म हो गया. 3 रवीना टंडन की मूवीज.
2: रवीना टंडन है ना, दी व्हाट डू वी से, नो आई लॉस्ट इट.
1: 3 things दैट यू नॉट नोटिस इन अ बॉय इन अ गाय.
2: हिज आईज, स्माइल एंड कॉम्प्लेक्शन.
1: कॉम्प्लेक्शन,
2: आई क्लिक ब्राउन बॉय. या
1: तो मिल गया ही आपको.
2: नहीं, आई मीन ब्राउन. या मैरिड.
1: Brown munda. You married to a brown munda then? Very nice. Very nice. 3 चीजें जो आप अपने हस्बैंड के बारे में चेंज कर सकते तो कर देते.
2: Little romantic and interactive and more talkative.
1: Time खत्म हो गया. Interactive, as if he's an app. Why is he not romantic or interactive? और अगर वो नहीं थे तो how did you fall in love?
2: In his eyes, actually, he has a pretty eyes.
1: ये लो दो. आँखें देख के बंदी ने शादी कर ली. सही है.
2: And complexion also.
1: Complexion भी. Was there any competition when you were trying to pursue him, your husband?
2: नहीं, as such तो ऐसा कुछ नहीं था.
1: अच्छा, वरना तो जितनी आप competitive
2: हैं. We just met. हाँ, we met. I mean, see again. I think he was the first person I met in life, and I fell in love with. And then I got married to him.
1: Yeah, because of his eyes. Like, he should thank his genes and his parents for beautiful eyes. 100%. Effort ही नहीं मारना पड़ा बंदे को. आँखों ने ही सारा काम कर दिया. You have a great evening and it was lovely talking to you.
2: Thank you.
1: Bye.
2: Thank you. Bye.

We'll be announcing another winner, जो हमारे साथ जाने वाले हैं टू जर्मनी. बहुत मजा आने वाला है. Salzburg, oh my God, has been a part of my bucket list, and I'm sure आपकी bucket list का भी हिस्सा है. And Europe in winters, मैंने खुद ने भी कभी experience नहीं किया. I've always been to Europe during the summer season, so yeah, this is going to be my first Europe वाली, Germany वाली सर्दी. And अगर आप shortlist हुए हैं, phones को संभाल के रखें, कॉल मिस ना करें एंड दिल की धड़कने काबू में रखें. अगला कॉल 800-1062 से जो आएगा वो यही बताएगा कि प्लीज ऑफिस से छुट्टी ले लो, बैग्स पैक कर लो, वी टेकिंग यू टू जर्मनी.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 7:09।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: Good evening, this is The Big Thrill and now it's time for me to make 7th October, Wednesday ki sham, one of the most memorable evenings of 2026 for someone. Kyunki jinhe main call karne wali hu, unhe ye khushkhabri dene wali hu that we are flying you to Germany. It's time to check in, all expenses paid trip. Wo bhi to Germany, especially in winters. It's all about the Christmas feels, the vibes. Can't wait. So let me just surprise her.
3: Hello.
2: Hi, is that Shweta?
3: Hi. Yes, that's her.
2: Wow, very excited, Shweta. Aisa kya hua Wednesday ko ki you are so happy?
3: Kya hua? Kab hua?
2: Main aapse puch rahi hu kya hua, kab hua?
3: No, but when I saw your call, I was like, I know why this call is coming.
2: This call could be anything, to be honest.
3: I am assuming the best.
2: You're a very optimistic person.
3: That I am.
2: है ना, तो मतलब कॉल से पहले छुट्टी वुट्टी अप्लाई कर दी थी?
3: करनी पड़ी थी because I have to apply advance में before a month.
2: तो अगर नहीं होता तो फिर?
3: नहीं होता तो कैंसिल कर देती, उसमें क्या है.
2: वेरी नाइस, इसे कहते हैं जिंदगी में पॉजिटिव रहो एंड कंग्रेचुलेशंस.
3: थैंक यू
2: श्वेता. ये जो स्पेलिंग चेंज करी है, क्या ये उसका असर है?
3: मेरा SH है.
2: अच्छा, तो शुरू से मुझे लगा कि कुछ चेंज वेंज कराई है जर्मनी की ट्रिप.
3: नहीं.
2: बट आर यू द लकी वन श्वेता, डू यू कीप विनिंग दीज थिंग्स?
3: पता नहीं यार, आई फील देयर इज दिस थिंग दैट आई हैव बीन सीइंग ऑन द इंटरनेट लेटली वेयर यू आर सपोज्ड टू इंक्रीज योर सरफेस एरिया फॉर लक टू हिट यू. सो यू आर सपोज्ड टू डू मोर and then luck comes to you.
2: Do
3: and
2: more I what?
3: Think, कोशिश करते रहो, कुछ ना कुछ करो तो luck लगेगा आपको.
2: नहीं, मुझे बताओ ना अपनी trick, मुझे भी अपनी luck लगानी है कहीं.
3: No, just keep trying. पता नहीं किधर क्या कब चल जाए.
2: That is very very true. You keep trying, yes. And universe works in mysterious ways. I'm sure Shweta ne
3: exactly
2: tabhi ye ekdam strong message universe ko de diya tha ki ab main shortlist ho gayi hu, ab main jaungi hi.
3: Yes, for sure. When I got the shortlist call, I was like, आने वाला है फाइनलिस्ट कॉल ऑल्सो.
2: That is how you manifest. Manifestation यही तो होता है. तो शॉपिंग वॉपिंग होगी कि वहीं से करेंगे?
3: वहीं से कर लेंगे.
2: सर्दी बहुत है, यहाँ से लेकर जाना, पता चले बीमार हो गए जाते ही. But congratulations Shweta, can't wait to travel with you. I'm going to sit next to you. मुझे भी अपना लक वाला सरफेस एरिया बढ़ाना है थोड़ा सा.
3: प्लीज ले लीजिए.
2: चलो,
3: मोर वेर इट कम्स फ्रॉम.
2: हाउ स्वीट. चलो, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन Shweta.
3: Thank you for calling me.
2: You're most welcome. See you in Germany.
3: Okay, I'll see you very soon.
2: Bye.
3: Bye.
1: The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: 92. The beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: मैं दीवानी पूछना जाना मस्त होके गावा लाके बंदे
0: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events, creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2.
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
0: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure. Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2. The Big Mix. Miss kiya gaya?
4: तुम कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
5: अच्छा मुझे बताओ सर, तक आपको फिर स्टेकेशन पे जाने की जरूरत पड़ती है?
6: Yes, very important.
5: अभी आप कहाँ पर हो?
6: अभी मैं काम पर हूँ।
5: काम पर ही हो, होटल में ही हो?
6: हाँ जी।
5: फिर आपकी होटल टू होटल करवा दें वापसी?
6: कहाँ भेज रहे हैं आप मुझे?
5: हम कहाँ भेज रहे हैं, अरे आपने किसके लिए पार्टिसिपेट किया था? बिग चेक इन टू जर्मनी के लिए किया था ना?
6: मुझे थोड़ा एकदम हम्बल सा साउंड करना पड़ेगा ना, बिकॉज एज मैं एक्साइटमेंट दिखा दूंगा तो फिर
5: नॉट एट ऑल, यू शुड बी एक्साइटेड, यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर बिग ट्रैक इन टू जर्मनी।
6: थैंक यू सो मच।
5: ये सोच रही हूँ कि आप स्टेकेशन इतने आपने इंजॉय कर लिए होंगे, तो जर्मनी जाके आप क्या क्या जज करने वाले हो, मुझे पहले बता दो आप।
6: जर्मनी जाके जज नहीं, जर्मनी जाके ऑब्वियसली आई विल गो टू बायर्न म्यूनिख। आई टोल्ड सेड आल्सो अबाउट दिस एंड आई थिंक आई विल गो टू बायर्न म्यूनिख स्टेडियम फॉर श्योर। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। आज ही मेरे को बोला था कि थोड़ा परमिशन चाहिए होगी, तो मैंने कहा जरा मैं बात करके आता हूँ अपने डायरेक्टर से।
5: So that's how Sarthak manifested for Big Check Into.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
7: Hey, jaldi hata tera khada na. Chal hata. Are jaldi hata.
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: Okay, patchy traffic at the moment. If you're on Hesse Street heading towards JVC, JVT, Production City, there's also slow-moving traffic right now. Agar aap Alasail leke ja rahe towards Jumeirah Park, further towards Discovery, all the way for Jan tak aapko ek 18 se 20 minute ka delay milne wala hai. Slow moving traffic still on Sheikh Zayed, the 48 minute delay right now. There's heavy traffic Merv to Muhesna plus Dera se if you're going towards Sharjah. बहुत ही स्लो मूविंग है फिलहाल, 40 मिनट्स का डिले दिखा रहा है। एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर।
3: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2. Big.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. Hello. सुन रहे हो ना?
3: Hey.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: I know it's a Wednesday, but we're making plans for a Saturday. If you're like me and you enjoy a slow Saturday evening with timeless classics, great storytelling and amazing mahal, तो बस ये आप ही के लिए है. दर्शन चोपड़ा इज कमिंग टू दुबई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. जिक्र लेकर है तो एंड फैंटास्टिक. जस्ट गूगल हिम, यू विल फाइंड हिम ऑन इंस्टाग्राम. इन फैक्ट आपने कई सारे उनके गाने सुने भी होंगे. सो ही इज परफॉर्मिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस सैटरडे एट द जंक्शन. राइट नाउ गिविंग यू चांस टू विन कपल इनवाइट्स इन जस्ट अ बिट. सो इफ यू वांट टू एंजॉय अ नाइस सैटरडे इवनिंग विद ग्रेट म्यूजिक, गुड मेलोडीज एंड ऑफ कोर्स सम सोल स्टारिंग स्टोरीज, स्टे राइट हियर. आई विल गिव यू अ चांस टू विन कपल इनवाइट्स इन जस्ट अ बिट.

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

सुनिधि चौहान की आवाज, अनु मलिक का म्यूजिक, राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. यह बिग थ्रिल, मैं हूं मानसी. 8:30 बज गए हैं, ऑलमोस्ट थर्सडे, फिर फ्राइडे एंड द वीकेंड इज हियर. वी मेकिंग प्लान्स फॉर द वीकेंड. दर्शन चोपड़ा, द ब्रिलियंट दर्शन चोपड़ा इज कमिंग टू दुबई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. इफ यू एंजॉय गुड बॉलीवुड क्लासिक्स, यू लव म्यूजिक, यू लव अ नाइस slow intimate evening, then this is it. Zikra aapke liye lekar aaye hain, Darshan Chopra live this Saturday at the Junction. I've got couple tickets to give you yahan pe, aur agar aap yahan tickets nahi jeet pate hain, then they are available platinumlist.net pe bhi. Filhal couple invites jeetne ke liye very very simple. उदित नारायण की आवाज, मूवी का नाम ही बता देती हूँ, वीर जारा. गाना कौन सा है, अगर आपको याद आ गया है, 800-1062 is my number. Give me a call. You have a chance to win couple tickets to witness Darshan Chopra live this Saturday, 10th of October.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, I'm Nancy. This is The Big Thrill and yahan par was your chance to win couple invites to witness Darshan Chopra live this Saturday. Zikra aapke liye lekar aaye hain Darshan Chopra ko for the first time in Dubai. This is happening at the Junction. Aa chuke hain Amit. Amit, kaisa raha Wednesday?
2: Wednesday theek raha.
1: Ghar pahunch gaye ho nahi pahunche?
2: Nahi, bas abhi ja rahe hain ghar.
1: क्या बनाया आज खाने में, पता आपको कि सरप्राइज होता है?
2: सरप्राइज होता है.
1: वेरी नाइस. तो ये हैप्पी सरप्राइज होता है कि नहीं?
2: व्हाट
1: इज द वन थिंग जो डिनर में बनती है ना, अमित कहता है यार मूड खराब हो गया.
2: कैबेज की सब्जी.
1: पत्ता गोभी.
2: पत्ता गोभी.
1: अच्छा, यू डोंट लाइक पत्ता गोभी? एक्चुअली देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट अ फैन ऑफ पत्ता गोभी. आई लव पत्ता गोभी.
2: Yeah, but I know, me no. No, no, no.
1: For me, पत्ता गोभी में पत्ता गोभी कम मटर ज्यादा होने चाहिए. किसी भी चीज में मटर हो मैं वो खा सकती हूँ. मटर का सीजन आ गया है अब तो ऑलमोस्ट.
2: Just a little opposite. किसी भी चीज में आप मुझे आलू डाल के देंगे मैं खा जाऊंगा.
1: हाँ, वैसे भी आलू मटर बेचारे ना कहीं भी फिट हो जाते हैं और अच्छे ही लगते हैं.
2: Exactly.
1: चाहे वो पराठे हो, पूड़ी हो, they just fit well. फिलहाल अब खाने की बात होगी, गाने की बात करते हैं. You enjoy music, Amit?
2: Yes, I do.
1: And this Saturday, Darshan Chopra is coming to Dubai for the very first time. I hope you know about him. If not, please Google him. You will fall in love with his voice. And it's going to be an evening full of Bollywood melodies, बहुत सारे कमाल classics. तो यहाँ couple tickets जीतने का मौका मैंने आपको दिया था. ये जो गाना है, वीर ज़ारा से कौन सा गाना है?
2: जानम देख लो मिट गई दूरियाँ.
1: लग रहा है काफी रोमांटिक रंगीन मिजाज के हैं आप. आपको बहुत मजा आएगा इस सैटरडे को. कपल टिकट्स आपके हुए. घर जाइए एंड टेल योर वाइफ आल्सो. कांट वेट टू सी यू गाइस ऑन सैटरडे एंड इट्स गोना बी अ फन इवनिंग.
2: Definitely.
1: Thank you, Amit. I hope आज पत्ता गोभी ना बनी हो.
2: नहीं नहीं बनी है, इतना तो मैं कंफर्म कह रहा हूँ.
1: चलो शुक्र, पर मेरी काली जुबान है पता है.
2: नहीं नहीं पत्ता गोभी नहीं है. That's
1: for sure. चलो, you have a great evening. Bye.
2: Thank you. Bye. Big 106.2.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. सम नाइट्स नीड नो वर्ड्स, जस्ट द राइट वाइब. सिंक इनटू द बिग चिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही, यही 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Chill, where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। From cafes to street food, budget finds to viral spots, tune into the big recommends every Sunday. क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. No rush, no noise. Just soul-soothing music on a moonlit ride. This is the Big Chill on Big 106.2. The beat of Bollywood.

Big 106.2, the beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, the beat of Bollywood.

106.2, The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, The Beat of Bollywood.

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

मुंबई। सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था। लास्ट लोकल क्या छुट्टी, साला किस्मत पटरी पर आ गई।

0: कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहते हैं।
1: The Night Shift, all your favorite music, Big 106.2.